0: 又是你。
1: हर विषय में सारो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहस का साथ में प्रीति तैयारी चौचौ
2: ग्लोबल आईडी बैंक सबै का लागि बैंक
3: डिस होम इंटरनेट।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: अहिले बिहानको 9 बज्यो।
2: हजुरको रेडियो 102

0: हजुरपुर रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज।
1: लौ आयो है क्वालिटी मा नम्बर 1 दाम मा सबै भन्दा कम
2: ओ प्रकाश कपूर।

क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी? ये दिल ऐसी गलती

0: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।
1: शेख ये बात ठीक है।

0: Gagin. वो बदल गया
1: रखू नाट की कोई विशंका अपने प्यार का बजा दो लंका तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया लगा दो लंका छोड़ छाड़ के दुनियादारी तेरे बीच पड़ गया मैं सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं।

0: बजाज एक्सचेंज मेला पुरानो बाइक संग नया बाइक काटने मेला
1: स्टार ऑटो हब प्राली घरना ऑटो हब प्राली को समन्वय एपेक्स ऑटो इंटरप्राइजेस बजाज सर्विस सेंटर मंथली एक राजस्था बस पार्क को सहकार में तपाई को शहर मंथली एक बस पार्क ट्राफिक कार्यालय को माथिलो पट्टी को भवन में रहकर एपेक्स ऑटो इंटरप्राइजेस बजाज सर्विस सेंटर में साउन 3 गते देखि 8 गते सम्म एक्सचेंज मेला
0: न्यू खोजने लाई झ्यामै बजाज ने दिन्छ एक्सचेंज मेला में
2: झ्यामै हाई भ्यालुएसन झ्यामै क्यास डिस्काउंट अन द स्पोर्ट फाइनान्स को सुविधा 0% ब्याज दर
0: निशुल्क हेलमेट र आवा 2083-84 को ट्र्याक पनि कम्पनीले तिरिदिनेछ थप जानकारीको लागि 9802038305 र 9806085530
1: एपेक्स ऑटो इंटरप्राइजेस बजाज सर्विस सेंटर मंथली एक बस पार्क ट्राफिक कार्यालय को माथिल्लो